0: तुम कुफा भी
1: सूतु सूतसाने ने रजकले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिसले तम से दिखूं तू चला रहे म्याना का काम रहे इतनी म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू वो तो नी मान लेकिन फिर दिन देसाना को दे मनारा का नास वो सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नतीन दे ए देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांग मिरी जाने सेंस अब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु पफतारा कौन सा है ये ले फिर ना काफी ना जाने मासूत सा वो ना चार चार ले तीन रुपये पे करने के ना बुला चुना ये ना जाने
3: सूट सान ले वचने के ते माता कास्कियार सुनना ला को ले सूट तुम आते थी सेना वातर पे सूट जिस चीज में आपत्ति लगान सूट सान से ले सूट पे ना काफी ना टीम याना कर सारे तुम आते थी वाला सा सीज़न सोच सोच मुला ला सच में ऐसे साझा मापा ये रना जब यंजा मानता नहीं मानता ना जरा के से ते तंज ना तुम तुम्हारा ने
4: पना काफी ना सूट ले ले उल्ला ना दे तुम Avanya tiko nak ane ciri arah tempat nane tiko arah kampan rinwe teh teta mata kaskar teh sutun mitosan ye fakere zana wasro teh mafnasha neto nareo fati nawe makafit ko anti lusmam cikti zaite nawe cmana cahal ti sani ye cmtu wenyan jalan famana nane tika manukan cik.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.